0: आजकल के टाइम में एक औरत होने का क्या मतलब है? सिर्फ मर्द होते बाहर सही होता है।
1: It's hard. I know it's hard.
0: बोल रहे हैं, मुझे पता है कि ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन है।
2: I would have a hard time answering too.
1: Yeah, so. I know. Maybe it's not a fair question. I don't know. With a, you know, 15 people and a microphone in her face, yeah. But it's a real question, right? Because she's part of this workforce.
3: मैं बाहर निकली तो मेरे आदमी को भी थोड़ा सपोर्ट होता है इधर का काम का, किसी के साथ हाथ नहीं फैलना हमें पड़ता है.
0: So she said that I don't have to ask my husband for